वापस आ गया स्टूडियो दे विच ते तुसी सुन रहे हो सांझी आवाज़ रेडियो दा प्रोग्राम सत श्री अकाल मेलबर्न तुहाडी अपनी होस्ट एंड दोस्त तनु दे नाल लैके चलदे हां तुहानूं महाराणी जिंदा दे सफर ते। अज महाराणी जिंदा दी किताब जो कि ज्ञानी सोहण सिंह सीतल उन्हां द्वारा लिखी हुई है उस दे असी आखरी सफर ते हां। इस किताब विच असी पढ़िया कि किवें किवें महाराणी जिंदा केड़ियां केड़ियां अखुआईयां चों लंघदी आ ते किवें उन्हें बचपन च एक सुपना देखिया कि मैं महाराणी बनना, फिर महाराणी हो के वह केड़ियां केड़ियां मुश्किलां औकड़ां चों लंघदी आ ते किवें उहदे जीवन दे नाल बीतदी आ। ज्ञानी सोहण सिंह सीतल उन्हां ने महाराणी दे पक्ष तों बहुत ही सोहनी किताब लिखी आ। चलो चलदे आ अज इस दे आखरी सफर ते। 19 मार्च नूं पंजाब राज खत्म किया गया। इस साल के दसंबर की 1 तारीख नूं महाराजा दलीप सिंह नूं पंजाब विचों देश निकाला दिता गया। 8 मार्च नूं उसनूं ईसाई बना लिया ते 19 अप्रैल नूं कलकत्ते तों इंग्लैंड नूं जहाज चढ़ा दिता। महाराजा दलीप सिंह नूं वलायत खबर मिली कि उसकी माता नेपाल विच अन्नी हो चुकी है। महाराजे नूं मां दे विछोड़े ने बैबल कर दिता। वह मां नूं मिलण वास्ते काला पै गया। सरकार वालों भारत आउण दी आग्या मिल गई। गवर्नर जनरल ने लिखिया महाराजा हिंदुस्तान आ सकता है पर पंजाब विच नहीं जा सकता। वह अपनी मां नूं भी मिल सकता है, वह अन्नी हो चुकी है। महाराजा दलीप सिंह जनवरी के अखीर कलकत्ते पुजा। कलकत्ते वह स्पैनिश होटल विच उतरिया। इत्थे पुजदिया ही उन्हें अपनी माता नूं लियाउण वास्ते आदमी भेज दिते। पुत्तर दा सुनेहा सुन के जिंदा कलकत्ते जाण वास्ते तैयार हो पई। राणा जंग बहादुर हर साल 20,000 देंदा अक गया सी। हुण ओह महाराणी जिंदा तो खलासी पाउणा चाहुंदा सी। जिंदा दी तैयारी बारे सुन के राजा राणा जंग बहादुर ने हुक्म दिता कि जे महाराणी जिंद कौर एक बार नेपाल तो बाहर चली जाएगी तो उसनों दोबारा इस देश विच पैर धरन की आग्या नहीं होगी ते उसका पत्ता सदा वास्ते बंद कर दिता जाएगा। यह हुक्म सुन के जिंदा सोची पै गई। इधरों मिल रही रोटी खुस जाएगी। अंग्रेज मेरे हाल ते कदे भी तरस नहीं करनगे। इस गल का मैनू सुपने विच भी भरोसा नहीं। फिर रेंदे दिहाड़े किवें निभणगे? अच्छा जिवें होवेगी वेखी जावेगी, पर मैं हुण जाणू नहीं रुक सकती। मैं दलीप बिना नहीं रह सकती, मैं जरूर जावांगी। हजारां औकड़ां सामने वेख के जिंदा तुर पई। मां पुत दे सन विच भावें सैकड़े दोजक बलदे होण फिर भी मां पिछे नहीं परतदी तां फिर जिंदा किवें रुक जांदी? जिंदा सोचती जा रही सी। दलीप उदों मासा 9 साल का सी जदों हथियारियां ने सानू मां पुत नूं विछोड़ दिता सी। हुण ओह 22 साल तो भी वडेरा हो गया होना है। उदों बड़ा भोला भाला ते बीबा जिहा लगता सी। हुण पता नहीं किहो जिहा लगता होवेगा। उदों ओह मासा मेरी ढाक तक आउंदा सी, हुण तां मेरे नालों भी गिठ सिर कढ़दा होवेगा। मूँह नाल आख लैना सौखा है, अज 13.5 वरे हो गए ने मेरे दलीप नूं विछड़िया। पुत्तर 13 दिन अखां तो ओले हो जाए तो मां दा कलेजा पट जांदा है। त्यो हे किस्मते, तत्ती मां पुत्तर नूं छाती नाल लावेगी पर उहदा मूँह नहीं वेख सकेगी। हे तकदीर, तू मेरा सब कुछ खो लैंदी हो पर अखां ना खोंदी हो। मैं पुत्तर नूं वेख तां लैंदी, अजे भी रब दे घर की घाट आए। की पता जे मेरा गवाचिया पूरन मिल पवे तां मेरियां अखां विच वी राणी इच्छरां वांग जोत आ जावे। 2 दिन सफर 2 दिन वास्ते अखां मिल जाण, मैं पुत्तर नूं रज रज वेख के रीझ ला लवां, फिर भावें रब उसे वेले प्राण कढ लवे। सारे राह गिणतियां गिणदी जिंदा फरवरी विच कलकत्ते पुजी। चिरी विछुन्ने मां पुत गल लग के मिले। दोहां दियां नेत्रां विचों गंगा जमुना बह रही सन। मां घुट घुट के कलेजे की अग नूं छाती नाल लाउंदी सी।
ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਉਹ ਬੈਬਲ ਹੋਈ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਚੁੰਮਦੀ ਉਹਦੀ ਪਿਆਸ ਹੋਰ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ। ਸਹਿਜ ਸਹਿਜ ਬਾਹੀਂ ਢਿੱਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਦਲੀਪ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਂਗ ਮਾਂ ਦੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਲਾਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਿੰਦਾ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਕੰਡ ਉੱਤੇ ਪੋਲਾ ਧੇਲਾ ਹੱਥ ਫੇਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਸਹਿਜ ਸਹਿਜ ਮਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਮੋਢੇ ਤੱਕ ਅੱਪੜਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਉਹ ਦਲੀਪ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਹੱਥ ਫੇਰ ਕੇ ਕੁਝ ਤੱਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹੱਥ ਸਿਰ ਉੱਪਰ ਉੱਠਦਾ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਦੀਆਂ ਰੀਝਾਂ ਵਾਂਗ ਫਿਰ ਢਹਿ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਜਿੰਦਾ ਦੀ ਛਾਤੀ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ੋਰ ਦੀ

मेरा राज भाग खोया, मेरा कोहेनूर खोया, मैनू पवित्र जन्म भूमि पंजाब तो विछोड़ दिता, ते अंत प्राणा तो प्यारी सिक्खी भी मेरी कुल विचो खो लईओ। तू ए भी ना वेख सकियो अज मेरी बंस विचों कलगीधर दे शहीद बच्चों का लहू मुक गया। ये वाक उहदा सीना पाड़ के निकले सन, उहदा सारा शरीर कंब रहा सी, रोंदिया रोंदिया उहदी हिचकी बज गई सी। दलीप का सीना चीरिया गया, वह मां के पैरां ते डिग के भुब्बी रोण लग पिया। मां ने चुक के उसनू फिर गल नाल ला लिया। दलीप कड़कोरे भरदा बोलिया, मां तेरी उजड़ी दुनिया काश किते मैं वसा सकदा दुबारा तो, तेरा राज भाग तेनू नहीं दे सकदा, तेरा कोहेनूर तेनू नहीं मोड़ सकदा, पर तेरे पवित्र चरणा दी सौं खा के कहना हाँ कि तेरी कुल विचों गई हुई सिक्खी फिर परता लियावांगा। मां नाल कीता होया ये बचन दलीप ने मुड़ पूरन किया। महाराजा दलीप सिंह ने सरकार हिंद पास बेनती की, मैं अपनी माता नाल हिंद विच रहना चाहता हाँ, आग्या दिती जावे। नाल ही सरकार कृपा करके महाराणी दे खोए हुए गहने हीरे जवाहरात ते नकदी वापस कर देवे। महाराणी नू सरकार वल्लों योग पेनशन दिती जावे जिस नाल ओ रहिंदी जिंदगी दा निर्बाह शांतिपूर्वक कर सके। सरकार अजे भी डरदी सी कि जिंदा देश विच रह के फिर कोई साजिश ना करे। ओ महाराणी नू हिंदुस्तान विच नहीं सी रहन देना चाहते। अंत सरकार ने जिंदा दे गहने वापस करने ते 2000 सालाना पेनशन देनी इस शर्त ते मन्नी ज्यो ऋषियां दी धरती भारत छड़ के लंका विच कैद रहना मन्ने। महाराजा दलीप सिंह ते महाराणी जिंदा ने यह शर्त ना मन्नी, जिंदा पुत्र दे नाल ही विलायत चली गई। जुलाई विच ओ विलायत पुजे, अंग्रेज कर्मचारियों ने उत्थे जिंदा वास्ते वक्रे घर का प्रबंध किया होया सी, पर ओ पुत्र तो वक्री रहना नहीं मनदी सी। ओ दलीप कोल मुलग्रेव कैसल विच ही रहना चाहती सी। इस तो पहला महाराजा दलीप सिंह ईसाई धर्म विच बड़ी श्रद्धा प्रगट करता हुंदा सी। जिंदा दे नेड़ नाल महाराजे दा ओ शौक बहुत मठा पै गया। जिंदा ने पुत्र नू उस दियां निजी जायदातां बारे भी दस्या, जिन्ना उते उस दी 1949 दी सुलह दा कानूनी तौर ते असर नहीं सी पैंदा। महाराजे उत्ते जिंदा दा असर वाधा वेख के अंग्रेज कर्मचारी बहुत घबराए। इंग्लैंड की सरकार ने कहा कि जिंदा नू हिंद भेज दिता जावे, पर हिंद सरकार ये गल ना मन्नी। अखीर जिंदा नू पुत्तर नालों विछोड़ के वक्रे घर एबडिंगन हाउस विच रहन वास्ते मजबूर कर दिता गया। उत्थे दलीप सिंह हफ्ते विच सिर्फ 2 बार मां नू मिल सकता सी। अंग्रेज कर्मचारियों के इस सलूक का जिंदा दे दिल ते बहुत बुरा असर पिया। उहदी सेहत पैरों पैर विगड़नी शुरू हो गई। रात दिन वह मारू सोचां विच डुब्बी रहिंदी, स्वर्ग वर्गे मेरे मुल्क इंग्लैंड विच उही नरकी जीवन गुजार रही सी। उस वेले वह जिंदगी तो तंग पै चुकी सी। वह साह साह नाल मौत नू याद करदी, मौत आउंदी ते उड़ीक वांदी कुंडी खड़का के मुड़ जांदी। एक खेड़ कई दिन तक हुंदी रही, अंत मौत नू दुखिया जिंदा ते तरस आ ही गया। 1 अगस्त नू जिंदा दी उम्र दा आखरी दिन सी। कहंदे हन बुझण लगे दीवे दी जोत जरा वधेरे रोशन हो जाया करदी है। मन किनारे पई जिंदा दी सुरत भी कुछ चिर वास्ते संभल गई। दलीप उहदी छाती ते सिर सुट के बच्चियां वांग रो रहा सी। जिंदा निसतरे हो रहे हथ नाल पुत्र दा सिर पलोसदी होई बोली, बेटा दलीप तू नहीं जानदा तेरे वास्ते मेरे दिल विच किन्नियां कुरीजां सन। रब साखीए जो मैं तेरे वास्ते जफर जाले ने, तू अजे 9 महीने ते 24 दिन दा सी जद तेरे पिता जी मैनू सदा लई छड़ के

चल गए। तेरे बदले मैं रंडेपा कट्टना प्रवान कर लिया, नहीं तो बाकी राणियां वांग मैं भी महाराज नाल सती हो जांदी। मेरे प्यारे लाल, 5 साल ते 11 दिनों दा सैं तू, जद किस्मत ने तेनू पंजाब दा बादशाह बना दिता, मैं अपने हथी तेरे सिर ते ताज सजा के तेनू लाहौर दे तख्त उत्ते बैठन वास्ते भेजा करदी सां। तेरे निक्के निक्के कदमां नाल मेरियां वड्डियां वड्डियां रीझां नचिया करदियां सन। मैं सोचिया करदी सां जद मेरा दलीप जवान हो के सही अर्थां विच राज भाग संभालेगा ते मैं जिंदगी दा सफर मुका के अंत दी वार पुत्तर दे मोढ़ियां ते अपना सरताज दे चरणां विच पहुंचांगी। शेरे पंजाब दे खब्बे हथ जिंदा दी मड़ी होवेगी, जिसनू मेरा लाल हीरे ते मोतियां नाल मड़ देवेगा। पंजाब दी उस शान नू वेख के लोक आगरे दा ताज भी भुल जाणगे, पर चन्न इस रीज दे परे होण दा सम्मान ही नहीं रहा। उस दा जुबान ते लियाउण दा की लाभ, पर एक सदर है जो मैं अंदरे लैके नहीं मरना चाहुंदी। ये 5 सेर मिट्टी पंजाब दी अमानत है, वेखी किते 11 दे देश विच रुलदी ना रह जाए। मेरे सवास पूरे हो जाण तां मेरी अर्थी नू इत्थों चुक लई, पंजाब अपड़ी लाहौर विच गुरद्वारा डेरा साहब दे सामने जा तरी। कोई सिख शहीद गुरु अर्जन देव नू मत्था टेक के बाहर मुड़दा वेखेगा तो उहदी चरण धूड़ मेरे मत्थे ना ला दी। भला जे तत्ती जिंदा दी पुठी तकदीर सिद्धी हो जाए, जिस वेले तू मेरा शेरे पंजाब दे चरणा च धर के अरदास कर रहा होवेगा, मेरियां सदरां असमान तो बूंदा बन के महाराज दी समाध ते बरस रही होणगियां। चन्न एक होर भी पक्की करना चाहुंदी हाँ, मरन वाले दियां अखां विच पानी दियां 2 बूंदा आ जाया करदियां हन। लोक उस दियां पलकां बंद कर देंदे ने, ओ आखरी हंजू धरती ते ढह के फना हो जाया करदे ने। पर मेरे लाल, मेरे नाल ये अनर्थ ना करी, मेरे मोई दे नेत्र बंद ना करी। मता मोई जिंदा दे हंजू इस बेगानियां दी धरती ते ढह के उसकी निर्दयी अंग्रेज फरियाद करन, उसने सारी उम्र मेरे नाल इंसाफ नहीं किया। ये मेरी अंतम भेटा है, मेरे सरताज वास्ते लै जाई। 2-4 हटकोरे आए ते जिंदा पूरी हो गई। कहिंदे हन मरन पिछों सब वैर विरोध मिट जाया करदे हन, पर जिंदा दे विरोधियां दे दिलों उस दे मरन ते भी वैर ना मिटिया। उस दी लोथ नूं पंजाब जाण दी आग्या ना मिली, अंग्रेजी सरकार वल्लों मसा इन्नी ही इजाजत मिली कि जिंदा दी लोथ नदी नर्मदा दे कंडे जाके सस्कारी जा सकदी है। बंबई दे नेड़े नर्मदा नदी दे कंडे महाराणी जिंद कौर दा सेवा बल रहा सी। महाराजा दलीप सिंह मां दे चरणा वल्ले खला हंजू वहा रहा सी। उहदे अंग्रेज रखवाले वापस जाण वास्ते काले पै रहे सन। जिंदा दा अजे सेवा भी ठंडा नहीं सी होया जद दलीप सिंह मजबूरन मगदे अंग्यार नदी विच परवाह के वापस मुड़ गया। जिंदा दी विभूति दरिया नर्मदा दीआं लहरां विच गोते खांदी समुंदर वल जा रही सी, ते उस दी आत्मा अपने उजड़े हुए पंजाब उत्ते झाती मारन वास्ते उड्डी जा रही सी। ए सी महाराणी जिंदा दी कहानी, जो कि असी पिछले कई हफ्तियां तो सुणदे ते पढ़दे आ रहे हाँ, ते असी उम्मीद करदे हाँ कि तुहानू वी ए कहानी उन्नी ही अपनी लगी होएगी जिन्नी असी इसनू पढ़दे हुए महसूस किया। सुनदे एक प्यारा जिहा गीत ते वापस आउने आ स्टूडियो दे विच।